गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर। आरजे अंकित आपके साथ। सुबह के बज चुके हैं 10:02 और मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके नॉन स्टॉप गपशप। जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप में मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ 11 AM तक, यानी 11 बजे तक आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। लेकर आया हूँ कुछ धमाकेदार गाने, धमाकेदार ट्रैक्स और धमाकेदार संगीत आप लोगों के लिए। इन सब के साथ दोस्तों मैं लाया हूँ एक टॉपिक जहाँ पर करूँगा मैं आप लोगों से बात। इस टॉपिक पर बताऊँगा आप लोगों को, इस टॉपिक के बारे में साझा करूँगा उस टॉपिक के बारे में आप लोगों से। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम हमारे हार्ट को, दिल को, हृदय को स्वस्थ रखें, कौन सी आदतें हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी आदतें हम पकड़ें ताकि हमारा दिल लंबे समय तक चलता रहे। दिल की बीमारियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया भर में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है। खराब लाइफस्टाइल, खानपान में गड़बड़ी के अलावा हमारी कुछ आदतें भी दिल की सेहत को सबसे ज्यादा खतरा पहुंचा रही है। तमाम अध्ययनों के आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट पीने की आदत को दिल को सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। धूम्रपान को आमतौर पर फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ाने वाला माना जाता है, हालांकि यह आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर आप भी धूम्रपान करते हैं तो तुरंत ही आदत छोड़ दीजिए, वरना जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे और भी ढेर सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज के कार्यक्रम में, लेकिन सुबह सुबह जिसको जलेबी खाने का मन हो रहा है उसके लिए ये मेरा पहला ट्रैक आप लोगों के लिए।

फिल्म फैंटम से दोस्तों आप सुन रहे थे असरार और अख्तर चैनल की आवाज में ये एक ट्रैक, प्रीतम का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। धूम्रपान की आदत पूरे शरीर के लिए खतरनाक। मेडिकल रिपोर्ट्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि जिस तरह से युवाओं में धूम्रपान की बढ़ती आदत देखी जा रही है, ये काफी चिंताजनक और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ाने वाली हो सकती है। धूम्रपान की हर कश फेफड़ों के साथ दिल और रक्त वाहिकाओं को धीरे धीरे डैमेज करती है। धूम्रपान के कारण शरीर में हजारों खतरनाक केमिकल जैसे निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचते हैं, जो शरीर के पूरे सिस्टम को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले हो सकते हैं।

फिल्म दिलवाले से दोस्तों बेनी दयाल और कनिका कपूर लेकर आए थे ये ट्रैक प्रीतम चक्रवर्ती का, संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। यही कारण है कि स्मोकिंग करने वालों के हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हृदय पर इसका दोस्तों क्या असर होता है, अब मैं बताऊंगा। धूम्रपान सीधे हृदय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सिगरेट में मौजूद निकोटिन हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हो सकता है।

हंसी तो फंसी से दोस्तों आप सुन रहे हैं सुनिधि चौहान और बिनी दयाल की आवाज में ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 10:17 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और आज दोस्तों मैं नॉन स्टॉप गपशप में बात कर रहा हूं कैसे अपने दिल को अपने हृदय को अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। निकोटीन शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है जो दिल पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाता है। इसके अलावा सिगरेट का धुआं खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। इससे दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता और हृदय की कोशिकाओं को डैमेज होने का जोखिम बढ़ जाता है।

यार यार सदा शफ़क़त अमाना तलीद की आवाज़ में आप सुन रहे थे ट्रैक, लिरिसिस्ट और कंपोजिशन दोनों थी और को प्रभो मुखर्जी की। धूम्रपान करने से खून भी गाढ़ा होता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। ये क्लॉट्स रक्त वाहिकाओं में जमा होकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में दिल की बीमारियों के कारण होने वाली 20% मौतें सीधे तौर पर धूम्रपान से जुड़ी होती है।

0: टू स्टेट से दोस्तों आदित्य सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य लेकर आए थे ट्रैक लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य कंपोजिशन शंकर एहसान लॉय की। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं रक्त वाहिकाओं के लिए भी धूम्रपान की आदत खतरनाक बन जाती है। अध्ययन में पाया गया है कि सिगरेट में मौजूद रसायन रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

फिल्म काई पोचे से दोस्तों आप सुन रहे थे मिली नायर अमित त्रिवेदी की आवाज में, ट्रैक कंपोजिशन अमित त्रिवेदी का, सुनंत कीर के लिए थे बोल। दोस्तों धूम्रपान से वाहिकाओं की लचीलापन कम हो जाता है और वे सख्त होने लगते हैं। इससे मेडिकल की भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। स्मोकिंग करने वालों में ब्लड वेसल्स के संकुचित होने की संभावना ज्यादा होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

फिल्म धूम 3 से सिद्धार्थ महादेवंशी पराव की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम कमोनिशन शमीर अंजान के बोल। धूम्रपान सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये फेफड़ों के कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। और दोस्तों अगला ट्रैक उनको डेडिकेट है जो दिल्ली से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ चुके हैं।

ये जवानी है दीवानी से दोस्तों अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान लेकर आए थे एक रॉकिंग ट्रैक प्रीतमा कमिशन कुमार के बोल। दोस्तों सिगरेट में मौजूद निकोटीन लत पैदा करती है जिससे व्यक्ति के लिए ये छोड़ना मुश्किल हो जाता है। धूम्रपान इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है।

0: Bye.
1: फिल्म शूट देशी रोमांस से दोस्तों सुनील चौहान और मोहित चौहान की आवाज़ सुन रहे थे एक रोमांटिक ट्रैक सचिन जिगर का कंपोजिशन जयदीप सहानी के बोल। और धूम्रपान से डायबिटीज होने का खतरा भी 30 से 40% फीसदी तक बढ़ जाता है दोस्तों।

फिल्म बर्फी का टाइटल ट्रैक मोहित चौहान की आवाज़ और प्रीतम का कंपोजिशन स्वानंद किरे किरे के बोल। और दोस्तों देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। 10:53 AM हो चुका है आरजे अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और मैं आज बात कर रहा हूं कैसे अपने हृदय अपने दिल अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। और दोस्तों अगला जो ट्रैक है ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ आप सभी सुनने वाले दोस्तों को।

0: फिल्म कॉकटेल से दोस्तों सुन रहे थे नीरज श्रीधर कविता सेठ की आवाज में, ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। और दोस्तों ये था हमारे कार्यक्रम का आखिरी ट्रैक आप लोगों के लिए।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।
0: तो दोस्तों 10:59 AM हो चुका है, यानी अब मेरा वक्त हो गया कि मैं आप लोगों से ले लूं विदा। तो इसलिए आप लोगों से मांग रहा हूं इजाजत, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलने वाला हूं कुछ ही दिनों बाद इसी चैनल पर एक नया कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, यानी आपके दोस्त आरजे अंकित को दीजिए इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से, ये तो वादा रहा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आने वाला है आप लोगों के लिए, तो आपको कहीं नहीं जाना और ट्यून करते हुए रहना है सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। और अगर आप मेरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं 11:10 पर एफएम गोल्ड पर, यानी 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर।
2: আকাশবাণী কলকাতা এফএম রেইনবো প্রচার তরঙ্গে এই মুহূর্তের খবর পড়ছি ধৃতি সেন শর্মা। নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত না করার জন্য মুখ্যসচিব রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্র

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: स्टूडियो की घड़ी में वक्त मैं सुचिश्मिता आप सबके संग और कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मिंत्रा की आवाज में आप सबके लिए।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप तीन का दरगाह। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। और स्टूडियो की घड़ी बता रही है 3:09 स्टूडियो में वक्त। दोपहर का ये वक्त जब थोड़ा थोड़ा जो है आलस आने लगता है और जो है हमें नींद सताने लगती है, चाहे हम वर्क में हो, किसी काम में हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, बस इस वक्त खाने के बाद, लंच के बाद जो है थोड़ी सी जो है थकान, थोड़ा सा नींद, ये तो जेन्युइन है, आ ही जाता है भाई। लेकिन आपकी इस नींद को भगाने के लिए और मैं लेके आ गई हूँ कार्यक्रम जिसका नाम है 3 का दरगा। आपके मेरे शो में तड़का लगाते हुए ढेर सारे गानों के साथ और इन्जॉय करेंगे इस गीत को साथ में।

मेहरबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

विशाल ददलानी, रेखा भरद्वाज की आवाज में सुना आपने गीत को, ये जवानी है दीवानी फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम के सुर से सजाई गीत। कार्यक्रम तीन का दरगाह सुन रहे हैं आप 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर, और अगला गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए, सुनते हैं साथ में।

जिंदगी में हमेशा खुशियाँ जो है बहुत बड़ी मिले ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें खुशी मिल जाती है। अब इस गर्मी में कोई हमें एक गिलास पानी ही पिला दे, एक ठंडी कुल्फ़ी भी हो सकती है वो, या फिर कोई प्यार से सर पे हाथ ही फेर दे कि बहुत गर्मी है आओ थोड़ी

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोपहर के 3:35 स्टूडियो के घड़ी में वक्त और दोपहर का मौसम गर्मी का और दोपहर का वक्त और इस वक्त जिसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, उनकी बातें कुछ ऐसी लगती हैं जैसे तेरी बातों की ठंडक कुछ ऐसी जैसे तपती दोपहर को छांव मिल गई। तुम मिले तो लगा कि इस गर्मी में भी सुकून के दो पल मिल गए।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज में हंसी तो फंसी फिल्म से सुना आपने इस गीत को। आज के 41 मिनट स्टूडियो के घरे में वक्त में शुचिश्मिता आप सबके साथ 107 AIRFM रेनबो पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को, कार्यक्रम तीन का दरका। आपकी लाइफ में थोड़ा और तड़का देते हुए सुनते हैं इस गीत को और

तेरे ख्यालों की हवा जब चलती है तो दिल को ठंडक मिलती है। तेरे बिन ये मौसम भी अधूरा लगता है, चाहे धूप हो या बरसात, तो हर वक्त जरूरी लगता है।

रुक करेंगे थोड़ा सा जो है मौसम की चेतावनी की ओर। 6 मई यानी कि आज 2026 को नंदिया, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

बीरभूम के कुछ जिलों में भी जो है हल्की से मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। बीरभूम के जिलों के कुछ हिस्सों में ऐसा होने वाला है अगले दो से तीन घंटों के दौरान। और जो है आप सब जो है बीरभूम नदिया सब लोग जो जहाँ हैं और बारिश की संभावना चुकी है, अगर ज़रूरी है निकलना तो अपनी छतरी अपना रेनकोट लेकर निकले और जो है सावधान रहें और सुरक्षित रहें। बारिश के वक्त बहुत ज़रूरी ना हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें। इसी के साथ कार्यक्रम का आखिरी गीत, तीन कदर का कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सबके लिए। मैं सुचिश्मिता आपके सबके साथ, सुनते रहिए साथ रहिए 107 AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम से तो मैं कहूंगी आप सबको टाटा एंड बाय बाय, लेकिन एक बार फिर हाजिर रहूंगी आप सबके साथ लेकर कार्यक्रम छायालोक शाम के 7 बजे।

साथ में हम बात करेंगे एक ऐसे जोड़ी के बारे में जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम सब इस जोड़ी को बखूबी मानते भी हैं। जी, आज की जोड़ी जो है हमारी वो है आम और गर्मी का मौसम। जी हाँ दोस्तों, मौसम तो कई सारे हैं लेकिन ये गर्मी का मौसम और आम की जोड़ी जो है हम इसका इंतज़ार पूरे साल करते हैं, है ना, क्योंकि जब तक गर्मियाँ नहीं आएंगी तब तक आम का जो है मौसम नहीं आएगा और जब आम आएंगे तो साथ में गर्मियाँ ज़रूर लाएंगी। तो आज हमारी जोड़ी जो है आम और गर्मी, मतलब कुछ खट्टी कुछ मीठी, ये जोड़ी रहेगी हमारे साथ पूरे 9 बजे तक और साथ में रहेंगे कई सारे बेहतरीन प्यारे प्यारे गाने जो आपको भी अच्छे लगते हैं, मेरे भी दिल के करीब हैं और हम सब मिलकर इस शाम को बनाएंगे खुशनुमा आमनुमा।

सात बजकर 9 मिनट स्टूडियो की खड़ी में वक्त, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ लेकर कार्यक्रम छायालोक, और छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ वेनसडे का शाम, मैं और आप साथ साथ, और आज हम साथ

7:30 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छालोक छालोक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हम साथ साथ में आम और गर्मी की। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्ते जो सीधे आत्मा तक पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसी बातें जो सीधे दिमाग में घुल जाती हैं। जी, जो दिल से निकल कर सीधे आत्मा तक पहुंचे, ऐसी एक जोड़ी है आम और गर्मी की। अब सोचिए ना कि अगर मामला गर्मी का ना होता तो आम का मौसम कैसे आता, और अगर आम नहीं मिलता तो हमें पता कैसे चलता कि स्वाद किसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम और उस मौसम के सबसे मीठे साथी की, आम की। अब यह हमेशा मीठा हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि आम भी तो रिश्तों की तरह खट्टी मीठी भी मिलती है।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप छह लोग हम साथ साथ, मैं सुचिश्मिता आपके साथ। 7:33 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, और आज हम साथ साथ में बात हो रही है गर्मी के मौसम और आम की चुड़की। तो भाई अगर हम बात करें इस मौसम की, तो गर्मी चाहे जितनी भी सताए, अगर हाथ में आम आ जाए तो मौसम भी शायद मुस्कुराए। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम, मुझे याद आता है कि कैसे गर्मियों के शाम में हम आम को लेकर बैठ जाते थे छत पे, या फिर शाम में जब करंट चला जाता था, लोड शेडिंग हो जाती थी, तो हम छत पे बैठकर जो है नानी के साथ, दादी के साथ बातें करते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वक्त गुजारते थे। और गर्मी का मौसम हो तो बस आम कच्चे हो या पक्के हाथ में ज़रूर रहते थे। गर्मी का मौसम मानो पूरा ही नहीं होता अगर आम की बात ना हो। फिर चाहे वो आम अचार के रूप में आए, ठंडी ठंडी छाछ के रूप में आए, या फिर जो है किसी और तरीके से आपके हाथ में पहुंचे, है ना। बात करें तो खट्टे मीठे आम की तो बात ही अलग है। जब बस आम का मौसम आता ही है और वो कच्चे आम बस पकने पकने पर होते हैं, वो खट्टे मीठे आम बस खट्टी मीठी जिंदगी की तरह ही तो लगती है, कभी अच्छी कभी खट्टी कभी मीठी।

गर्मियों का नाम सुनते ही किसी को याद आती है पसीने की बूंदें, तो किसी को याद आती है छुट्टियों की मस्ती, बचपन में की गई ढेर सारी मस्ती। गर्मी का मतलब होता है ना स्कूल ना होमवर्क, बस खेल आम और नानी का घर, है ना। धूप तेज थी पर दिल ठंडा होता था, क्योंकि उस वक्त जिंदगी में टेंशन कम और आम ज्यादा होते थे। दोपहर की लू छत पर आराम से शाम को बैठना, ठंडी ठंडी हवा खाना, और साथ में अगर बिजली ही चली जाए तो वो क्लासिक टाइम बन जाता था। और गर्मी की सबसे खास बात क्या है? मेरे लिए तो शायद आम ही है। आम, जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक फल नहीं, ये तो पूरा का पूरा इमोशन ही है, जो कि गर्मी के मौसम में ही बस हमें मिलता है। फिर बात हो लंगड़ा आम की, अल्फांसो की, चौसा की, या फिर दशहरी की, हर तरह के आम, बस मैंगो पीक जो है ये ज़रूरी है। अब हम जो है आम आदमी हैं, और आम आदमी आम खाना कैसे छोड़ सकता है, है ना। तो आज के हम साथ साथ में बातें हो रही हैं गर्मी और आम की। रात में सुन रहे हैं ढेर सारे प्यारे प्यारे नगमे, और आज की शाम गीतों के साथ मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप ये कार्यक्रम।

आप सबके साथ लेकर कार्यक्रम चालुक एक बार फिर और पूरे रहूंगी 9 बजे तक आप सबके साथ। सुनते रहिए साथ रहिए 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ

याद कर लिया है। बिल्कुल, हम भी याद कर रहे हैं, लेकिन हम अभी किसी के इश्क को नहीं, बस गर्मी के मौसम में आम को याद कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हम भी जो है थोड़ी देर में जाके घर पर अपने आम खाएं, है ना। हम छह लोग, हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ में आज हम बात कर रहे हैं आम और गर्मी के मौसम की।

सिर्फ एक इमोशन नहीं, आम तो बस आम है। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, आम लेकिन बेहद खास, थोड़े चिपचिपे पर दिल के बेहद मीठे और बहुत ज़्यादा प्यारे। अब आम की बात हो रही है तो आम रस, आम पन्ना, आम की कुल्फी, आम का अचार, गर्मी का पूरा स्वाद आम के बिना शायद अधूरा रह जाए। चलो ये भी मान लेते हैं कि गर्मी थोड़ी खड़ूस होती है, पसीना चिपचिपा और जो है थोड़ा सा मूड भी कैसा कैसा हो जाता है, बिल भी ज़्यादा आते हैं करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की। और हाँ, गर्मी में बस एक ही लफ्ज हम बोलते हैं, आज बहुत गर्मी है। लेकिन इस बहुत गर्मी में एक चीज़ बहुत मीठा है, वो है आम। साथ में आम के शरबत भी।

कार्यक्रम सुन रहे हैं छाया लोग, 8:20 स्टूडियो की खड़ी में वक्त। मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं कार्यक्रम, और ढेर सारे नगमे, प्यारे प्यारे नगमे, दिल के बेहद करीब ऐसे नगमे। आज हम बात कर रहे हैं साथ की, आम के साथ की, गर्मी के साथ की, गर्मी और आम के साथ की। जी हाँ दोस्तों, आम सिर्फ एक फल नहीं, ये तो पूरा इमोशन है, हम सब जानते हैं, और शायद इसीलिए इसे फलों का राजा भी कहते हैं। और जो है आम ज़्यादातर लोगों को जो है पसंद है। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, ऐसे फल होते हैं जो कोई आपको नहीं पसंद, कोई मुझे नहीं पसंद, कोई किसी और को नहीं पसंद, लेकिन आम जो है ज़्यादातर आम लोगों को पसंद आता है, है ना। और हर आम की अपनी कहानी होती है, अपनी खुशबू होती है, और फिर आप उसे कैसे भी खाएं, खट्टा मीठा खाएं, अचार बना के खाएं, आम रस बना के खाएं, आम की चटनी बना के खाएं, या फिर सिर्फ पके आम को काट कर बस खा जाए। लेकिन इस प्यारे से आम को खाने के लिए हमें गर्मी के मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है, और गर्मियों के मौसम में ही तो ये सुख हमें मिलता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गर्मी से जो हम परेशान रहते हैं उसका क्या, लेकिन परेशानी भी वही है, सल्यूशन भी वही है। हम गर्मी से भागते हैं, पर आम के लिए उसी गर्मी का इंतज़ार भी तो करते हैं, और इंतज़ार करते हैं आम का, लेकिन गर्मियों का सीज़न साथ में आ ही जाता है। ऐसे में हम आम और गर्मी के बीच में जो है घूमते रहते हैं, और इसी के साथ रुक करेंगे अगले गीत की ओर।

हर दिन हर मौसम हमें कुछ सिखाता है। गर्मियों का मौसम हमें सिखाता है कि कम में भी कैसे खुश रहा जाता है। जिंदगी भी आम की तरह होती है, कभी खट्टी कभी मीठी, पर असर ज़्यादा वहीं मिलता है अगर वो सच्चे और ठीक वक्त पर मिले तो मज़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और आम हो या जिंदगी, ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस लो काटो और खा जाओ। नोट के साथ अगला गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए, 107.8 एफएम ट्रेन बोतल से दिल तक पर, मैं सुषमिता आप सबके साथ।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

जिंदगी भी आम की तरह है, कभी कभी खुशी, कभी कभी गम। और गर्मी और आम का साथ तो कभी नहीं छूटेगा, जैसे आपका और हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे दूसरे मौसम में आम नहीं मिलते, वैसे वक्त हो जाने पर हमें भी जाना पड़ता है, आप सबको टाटा एंड बाय बाय बोलना पड़ता है। और स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अब जो है वक्त है कि मुझे भी आप सबको कहना होगा कि बस अब आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं हमारे भी पास। तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गर्मी की असली मिठास आम में नहीं, उन यादों में है जो इन आम के साथ या फिर गर्मी के मौसम में अपने भाई बंधुओं के साथ हम बना लेते हैं। चुपके से कभी आम चुरा के खा लेते हैं फ्रिज में से, या फिर किसी को अपने प्लेट से एक टुकड़ा निकाल के दे देते हैं। ये सारी छोटी छोटी फीलिंग्स, ये छोटे छोटे जो लम्हे होते हैं, यही इम्पोर्टेंट हैं। और खुशी अगर हम हमेशा बड़ी चीज़ों में ढूंढेंगे तो शायद वो एक या दो मिलेंगी हमें, लेकिन या हम अगर खुशियाँ हर पल में, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढेंगे तो हर पल खुशनुमा होगा, हर वक्त जो है हम खुश रहेंगे। रुक करते हैं अगली गीत की ओर।

0: साथ।
1: और जाते जाते छोड़े जाऊंगी आपको पिको फिल्म से इस गीत के साथ। सुनते रहिए, साथ रहिए 107.9 FM ट्रेन बोतल से तल तक। मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ लूंगी इजाजत, मिलूंगी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में फिर कभी।